मशहूर डाकू जेल चो फरार होके एक बीड़ विच बैठे अपना शिकार भुन रहे हैं। शाम कौर नौ की एक औरत नू रस्ते विच कुछ बदमाशा ने लुट लिया। औरत दे रोण की आवाज सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं। अगों बाद की कहानी।

0: पिछले 25 सालों तो राजनीति की गहरी समझ रखने वाले ते ब्रैम्पटन नू चंगी तरह समझने वाले अमन शर्मा हुन ब्रैम्पटन दे वार्ड 7 ते 8 तो रीजनल काउंसलर दे कैंडिडेट ने।
1: की तुसी चाहुंदे हो एक ऐसा काउंसलर जो तुहाडी गल सुने ते तुहाडे मुद्दे ते डट के काम करे, तो याद रखो अमन शर्मा रीजनल काउंसलर।
0: प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रैफिक दे स्पीड बम्प्स, पार्किंग दी प्रॉब्लम, भीड़ भाड़ वाली सड़कां, बाइक लेन्स, नॉइस पोल्यूशन, स्ट्रीट लाइट्स, डेवलपमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी ते अफोर्डेबिलिटी।
1: तुहाडे बच्चां दे बेहतर भविष्य लई नाल ही इन्ना मुद्दा ते जवाबदेही, पारदर्शिता अते बेहतर हल लई अमन शर्मा नूं अपना समर्थन दिओ।
0: वार्ड 7 और 8, रिमेंबर द वोटिंग डे October 26, 2026, एडवांस वोटिंग October 9, 10, 11, 16 और 17।
1: पेड फॉर बाय अमन शर्मा कैंपेन।
2: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-5594-6478355294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: Du bist Job, Assas, Grasses, Hebises, Nadet, Hose, Bises, Bole, Sony Hall, Sassiakal.
1: मैं कह जी काफी टाइम तो पापा का दी रेनोवेशन नहीं करवाई ताही ता कर वधिया प्राइस ते सेल नहीं हुंदा
2: शम्मी पठल होरा नाल करो गल कर दी रेनोवेशन करा के लिस्ट कर देने वधिया रैकेट प्राइस ते सेल करवा के देंदे ने
1: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछानिया नाम मल्टी अवार्ड विनर ब्रोकर शम्मी पठल
2: वधिया रैकेट प्राइस ते कार सेल करवाउन ले कॉल करो 416-917-7763 यानी 416-917-7763

खो कर आया हूँ इंसानों की गलियों से, इंसानियत ना मिली इंसान ना मिला। इबादत के नाम के झंडे तो मिले, इबादत ना मिली भगवान ना मिला।

0: कि तुसी भी इन्वेस्टमेंट दे इस दौर च प्रॉपर्टी च इन्वेस्ट करना चाहते हो कि तुसी भी प्रॉफिटेबल आउटकम ले प्रॉपर्टी लभ रहे हो फिर फेयर डी रियल्टी रिप्रेजेंट्स आउटस्टैंडिंग फार्म हाउस 28 एकड़ लैंड विद टू रोड फ्रंटेजेस डबल कार गैराज ग्रीन हाउस एंड वर्कशॉप यही नहीं 407-418 हाईवे तो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी ते फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कॉल द बेस्ट टीम फेयर डी रियल्टी ब्रोकर ऑफ रैकेट हरदीप पंदेर एंड 905-671-2000
1: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.
2: जे टाइम दी सेविंग करना चाहते हो तो पहुंचो ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड जिथे तुसी ट्रक वॉश ट्रक ऑयल चेंज ते रिपेयर एक ही रूफ थले करा सकते हो इत्थे बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे ने जिवें ऑयल चेंज नाल ट्रक वॉश सिर्फ $45 तुसी कैट दीआं बैटरीआं विद इंस्टॉलेशन चेंज करा सकते हो एट $850 सारीआं रियर ड्रम and rear brake change at $750 and AC recharge is at just $180 so reach out to them call at 905-452-9955 inada address hai 71 Stafford Drive Brampton they right now a hiring bhi kar rahe ne je tanu truck mechanic da koi experience hai you can call them their number is 905-452-9955
3: रियल एस्टेट दी दुनिया विच आओ अपने सुपनेयां नूं सच कर विखाओ फेयरडेल रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ
4: रियल एस्टेट दीआं बारीकियां सिखो ते कंपनी वल्लों क्लाइंट्स लीड्स वी पाओ
3: फेयरडेल रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने
4: अज ही कॉल करो फेयरडेल दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नूं
3: 905-671-2000
4: फेयरडेल नाल हाथ मिलाओ अपने सुपनेयां नूं सच कर विखाओ
5: घर नूं घर बनाउंदा है कंफर्टेबल फर्नीचर ते जदों फर्नीचर दी गल आउंदी है ते फिर याद आउंदे ने कासा फर्नीचर वाले जो है सब तो पुरानी ते भरोसेमंद फर्नीचर दी दुकान जी हां इत्थे तुहानूं मिलदा है कस्टम सोफा लेदर सोफा सोफे डबल बेड मैट्रेस ते पूरे घर दा सारा फर्नीचर ओ भी वाजिब रेटां ते सो अज ही पहुंचो कासा फर्नीचर 120 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड ब्रैम्पटन इना दी एक होर लोकेशन है सोफा मार्ट 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन ज्यादा जानकारी लिए कॉल करो परमजीत होरानू 905-803-8056 905-803-8056
6: कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी यानी कि CRA बिना किसी कोर्ट जजमेंट तो तुम्हारे बैंक अकाउंट नो सीज या फ्रीज कर सकते हैं तुसी CRA दे कर्जे नो लीगली माफ करवा सकते हो फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल DCAP
7: 905-908-2499 और विजिट 411debt.ca सम कंडीशंस अप्लाई
8: ऑटो ओनर्स क्या आप ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं या फिर नया ड्राइवर ऐड करने के बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़ गया है अगर आपके पास जी या जी टू लाइसेंस है और कनाडा में 3 सालों का इंश्योरेंस एक्सपीरियंस है तो टेंशन मत लीजिए
9: ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया को आज ही कॉल करें जो आपको अच्छा प्रीमियम ऑनेस्ट एडवाइस और ग्रेट सर्विस भी देंगे अपनी होम और ऑटो इंश्योरेंस का पैकेज बनवाएं और अप टू 30% तक बचाएं ऑल स्टेट इंश्योरेंस के दीक्षा गुलेरिया 6476562810 That is 6476562810.
10: ड्राइव कर रहे हो शो नो एंजॉय कर रहे हो कुछ बोल रहे हो
11: ड्राइविंग लाइसेंस
10: नो
11: पुलिस ऑफिसर
10: नो नो
11: ट्रैफिक लाइट्स
10: नो
11: देन
12: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक करने लिए आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी 647-325-9900 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस
13: जिंदगी एक सफर है सुहाना
14: भाई ये ट्रक ता हुन मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुन सोचदा वे कोई यूज ट्रक ही ले लवां पर समझ नहीं आउंदी वे कित्थों लवां
15: ओए इहदे च सोचण वाली केड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नु कॉल कर ओए ओदे तो वधिया कोई नहीं
16: जी हां जे तुहानू यूज ट्रक दी लोड़ है तो तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਈਗਲ ਟਰੱਕ ਸੇਲ 17 ਸਟ੍ਰੈਥਨ ਐਵਨਿਊ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਕਾਲ ਵਿਲ ਸੇਖੋ 416-819-6000
17: ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? 11:30 ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ?
12: ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
17: ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ?
12: ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬੜੋ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਸੇਵਿੰਗ 100 ਡਾਲਰ ਦੀ 905-458-1331 ਸਟੇਪਲ ਬੁਸ਼ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਤੇ ਸਟੇਪਲ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ 905-458-1300।
18: ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਹੋਮ ਐਕੁਇਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਧਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ।
12: ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਮ ਐਕੁਇਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-671-2000 905-671-2000। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
19: ਯਾਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਲੋ ਹੈ, ਬਿਲਡਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਥਰੂ ਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਲੀਫ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-518-3200 416-518-3200।
20: F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-302-4941।
21: ਹਾਂ ਵੀਰ ਰਣਵੀਰ, ਕਿੱਧਰ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ, ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਟੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ।
22: ਯਾਰ, ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਲੇ।
23: ਦੇਖ ਬਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਲੋਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ।
24: ਅੱਛਾ ਜੀ,
25: ਆਹੋ ਜੀ, ਨੀਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਐਂਡ ਲੋਨਸ? ਦੈਨ ਕਾਲ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਐਟ 905-671-2000। ਨੋ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਨੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ, ਲੋਨ ਅਪਰੂਵਲ ਵਿਦ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ। ਨੰਬਰ ਰੱਖੋ ਯਾਦ, 905-671-2000 905-671-2000 Mr. Sandhu।

0: पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600। हेलो ब्रो, किथे है तू?
1: मैं क्लाइंट ना मिलने जा रहा हूं, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स पे बैठ जाइए।
0: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया। हूं तो क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनी चाहिए ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ ना, प्राइवेट बूथ्स में फुल प्राइवेसी मिलती है, फ्री वाईफाई और लग्जरी एंबियंस, बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जाती है, खाना भी बहुत बढ़िया।
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग होगी।
0: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। कोई कॉल करो 9054512600, 9054512600।
2: ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401-416-816-8404-84-01।
3: याद है मैनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट। थैंक्स करदी हां मैं स्पीडएक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील कीता, रेंटल कार भी दित्ती ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दित्ता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडएक्स ऑटो कलिजन, 181 रदरफोर्ड रोड साउथ, यूनिट 11, ते या कॉल करो 416-277-9221, 416-277-9221।
4: पापा पापा, सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
5: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
6: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
7: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1, रेडियो आवाज।

0: कोई मौका आने वाला है, सो इट्स बेटर कि अगर आपने नहीं चेंज कराई है अपनी विंडोज डोर्स तो 416-206-3200 पे कॉल करिए।
1: भाजी लोगों की आदत आ फरनेस वाला मुंडा कोल बैठा
0: जी,
1: जिदन माड़ी ठंड माइनस होंदी है
0: बिल्कुल,
1: जिहड़ा काम 300 दा करदे रहिंदे तो 1300 च करा लैंदे ने बिल्कुल। मैं शो नहीं खत्म कर देना, बच्चे चुनिया वड्डी जाने नंबर दो मर जा 416-206-3200 शिवानू नूं कॉल करने। शिवानू बहुत शुक्रिया। और मेरे ना ब्रिजी भी होते सी, अज बंदे ही बड़े कट्ठे हुए ने, सारे सारा शहर कट्ठा हो गया। ब्रिजी कैसे है?
2: सर्दी कला जी, ऑल ग्रेट।
1: ओके ब्रिजी जो है वो ब्रिजी आप कौन कौन सा तेल यूज करते हो?
2: ये हमारे से तो आयुर्वेदिक तेल है जी, मोरवन्ना महानारायण तैलम, धन्यदुरम, शीरबला, चंबरती आदि।
1: चंबल से आदि है
3: नवा
1: तेल है, अभी भी पंजीरी बनाने लगे जंगली पंजीरी तैयार कर लगे ठीक है। सो ब्रिजी के जिहड़े तेल ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां च निकलते ने, थोड़े किसी दे भी सोजिश है जिहड़ी स्वैलिंग है उही प्रॉब्लम है जो थोड़े दर्द हुंदा बॉडी दे विच, उह स्वैलिंग हुंदी है, स्वैलिंग नूं खत्म करदा ते इक इहनां दे ढंग ने। ब्रिजी आप कौन कौन से तरीके से मालिश करते हैं?
2: किसी को कोई दर्द, स्ट्रेस, टेंशन, लोअर बैक पेन, साइटिक पेन, नींद का लैक ऑफ स्लीप, कोई प्रॉब्लम है जी हमारे साथ अभ्यंगम पोटली ट्रीटमेंट, शिरोधारा, शिरो अभ्यंगम, ऑल काइंड्स ऑफ आयुर्वेदिक।
1: ये को मशीन में बैठाते हो जिसमें पसीना निकल जाता है बंदे का?
2: वो आयुर्वेदिक डिटॉक्स है जी, स्वेदनम।
1: स्वेदनम
2: शरीर
1: नाम है, बहुत बढ़िया, लोग देखने जाएंगे स्वेदना कह जी। सो स्वेदना, स्वेदना में बैठने में पसीना निकल जाता है हर एक बंदे का। सो तुसी जहजा 500 मीटर भज ले फुल स्पीड ना, जहजा स्वेदना च आराम ना कुर्सी डाके बह गए ते इको बराबर है। ते ब्रिजी नंबर बोल दो, $55 तो इहदा पैकेज स्टार्ट हुंदा है, ना इनफ्लेशन दा रौला ना महंगाई दा रौला, ते तुहाडे शरीर नूं तुसी सब तो वधिया गिफ्ट मेल और फीमेल दोनों दे सकते हो। मेल और फीमेल दोनों तरह दे मालिश करन वाले इहनां को औरतां और मर्द दोनों दे वास्ते अलग अलग लोग ने, ते तुसी कॉन्टैक्ट करना। ब्रिजी नंबर बोल दो पंजाबी में अपना,
2: 647-619-1369
1: ठीक है, 647-619-1369 ते ब्रिजी नूं कॉल करने, 647-619-1369 ते ब्रिजी नूं कॉल करनी हैगी है। थैंक यू। और रेडियो आवाज़ में सुन रहे तुसी ते साडे नाल जो स्टूडियो दे विच गैस्ट भी आए हुए ने, हाँ जी की हाल चाल है?
4: हाँ जी चढ़दी कला जी,
1: की नाम तुहाडा?
4: साहिल वर्मा।
1: ठीक, काम कंपनी का नाम?
4: रिलायबल हीटिंग एंड कूलिंग।
1: रिलायबल ठीक है। तो संतोष जी तुम्हारा नाम की है?
3: सत श्री अकाल जी, मेरा नाम भी सही क्या तुसी संतोष कौर है और मैं फेयर डील ब्रोकरेज नाल काम कर दी हाँ, ते नाल नाल असी रेडियो भी इंजॉय करीदा है। सो अज बहुत ही प्यारा दिन है, तुसी सारे चढ़दी कला विच रहो ते इंजॉय करो।
1: थैंक यू संतोष। मैनू ना शोले हमेशा याद रहिंदी है
3: जी, जी
1: शोले च कहिंदे ना कि यूके ओह कहिंदी हुंदी है बसंती
3: जी,
1: वो कहना बसंती जी आपका नाम क्या है? यूके हमारा नाम बसंती है। मौसी हमें ये बुलाती है। सो चलिए फिर एक सफर दे वाल बहुत खूबसूरत ते गल्लां बातां दा सिलसिला शुरू करते हैं। गुरप्रीत सिंह ढिल्लों मेरे नाल। ढिल्लों साहब सत श्री अकाल जी, की
5: हाल है? सत श्री अकाल भाजी, की हाल है?
1: बस वधिया चढ़दी कला। 926 स्टूडियोज घड़ियां ते हो गए ने, ते कुछ जिहड़ा इलेक्शन ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੰਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 9-10 ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ
3: ਜੀ,
1: ਪਰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ
3: ਜੀ,
1: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਓਵਰ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।
5: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: भाई ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा भी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी भी कित्थों लवां।
3: ओए इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हाँ, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक इन मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल बिल सेखो 416-819-6000।
5: ब्रैम्पटन वासियों, रीजनल काउंसलर ले वार्ड 2 अते वार्ड 6 तो प्रेमपाल गिल चौन मैदान विचान।
6: प्रेमपाल गिल दे कैंपेन ते मुख्य मुद्दयां विच पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल जॉब्स अते बिजनेस ग्रोथ, लोअर प्रॉपर्टी टैक्स, सिटी हॉल विच ट्रांसपेरेंसी, ट्रैफिक, ट्रांजिट, रिस्पांसिबल स्पेंडिंग अते पावर दा मिसयूज रोकना शामिल है।
5: वोटिंग डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग दिया तरीका नोट कर लो, 9, 10, 11, 16 अते 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट premgill.ca।
6: By Prempal Gill.
7: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार। मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट कीता। मेरी एब्सेंस विच असीं देखिया टैक्स इंक्रीज, हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया कीता। जदों मैं तुहानू रिप्रेजेंट कीता, मैं टैक्स घट रखे, बुजुर्गां ने बस सर्विस मुफ्त कीती, सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लिआंदा अते हजारां नौकरियां लिआंदियां। सब तो इंपोर्टेंट, मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां। हुण मैनूं करप्शन नू रोकण लई तुहाडी मदद ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ।
8: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ।
9: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई भरोसेयोग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नूं अपना कीमती वोट पाओ।
10: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्ना मुद्दयां लई जनता दा साथ देणगे, उन्हां च अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती, क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कारवाई, वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना, लोकल डिवेलपमेंट, नाल ही वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशंस नाल कनेक्टिविटी, फुल पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट, ग्रीन स्पेसिस दी मेंटेनेंस शामिल है।
9: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज्ड बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
11: मेरा नाम राकेश शर्मा ते मैं सिटी काउंसिल लई कैंडिडेट हां वार्ड 7 एंड 8 ब्रैम्पटन दे विचों। अपने बहुत ही ब्रैम्पटन दे विच इश्यूज हैगे आ, कंसर्नस हैगी आ। सब तो मेजर कंसर्न जिहड़ा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहा हैगा, ओहदी रिस्पोंसिबल स्पेंडिंग नहीं हो रही, सानू बैटर सिटी सर्विसिज नहीं मिल रही, लोकल बिजनेस की सपोर्ट है नहीं ते और प्रॉपर जिहड़ी अपनी नेबरहुड सेफ नहीं हैगी। अगर तुसीं मैनू इलैक्ट करदे हो, मैनू सिटी हॉल दे विच मैं तुहाडी आवाज बन के जावांगा ते मैं जिहड़े जिन्ने भी तुहाडे इशू आ इन्हां रिजॉल्व करांगा। Rakesh Sharma, candidate for city councillor, ward 7 and 8.
1: Approved and paid by Rakesh Sharma campaign office.
12: ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਬੇਫਿਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਬੇਫਿਕਰ।
13: ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਗਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਲਾਨਸ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ RESP। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋ ਬੇਫਿਕਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਗਰ ਨੂੰ 647-765-2340-647-7563-2340।
14: You're listening to Gumtaz Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। एच के मूवर्स, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
1: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर।
2: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि, भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केथरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-680.

0: हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीद

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज और जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888
1: serving from two locations best service best price specs express के साथ

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तोड़े इन्ने सालां दे परोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन तीन लोकेशन तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165

0: दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन।
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 905-457-3131।
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: जिंदगी हैरानियों नाल भरी हुई है पर तुहाडे परिवारां दा फ्यूचर उन्हां विचों एक नहीं होना चाहिए। प्लैनेट इंश्योरेंस तो कीती हुई लाइफ इंश्योरेंस नाल तुसीं अपनी लाइफ दी सारीआं इंपोर्टेंट चीज़ां नूं प्रोटेक्ट कर सकते हो। ते साडे प्लान अफोर्डेबल ते फ्लैक्सीबल भी ने ते असीं उन्हां नूं डिजाइन करदे हां तुहाडी नीड दे हिसाब दे नाल टू गिव यू दैट पीस ऑफ माइंड। ते तुसीं कॉल करना है मैनूं विधि छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस ते मेरा नंबर है 416-524-3535 416-524-3535।
3: ए टू जी किचन कैबिनेट, बई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं। लकी भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते ए टू जी किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो।
4: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.

my God, what a song, man. I love it. Beauty. Oh, oh, oh. कैसा प्यार है इस गीत में, कैसा रोमांस है, कैसा इश्क है, कैसी तांग होती है ना किसी को मिलने के लिए, ये वैसा गीत है भाईजान।

0: वाओ कैसे यार लफ्ज है, और प्यार तो बिना दुनिया सारी सुननी है, और ये बड़ी जरूरी चीज है। और पटा साहब अखीर ते होर की कहना चाहोगे सर?
1: मैं हजी जी अपने थोड़े अपने उन्होंने स्रोतों ने गल करनी चाहूँगा जो कि साढ़े फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं।
0: हाँ
1: उन्होंने मतलब जे अपने उन्होंने को लाइसेंस हैगा जो नवा लाइसेंस लेना चाहते है वो तकरीबन हजी जी असं उन्होंने हर तरह हैल्प करा जो बहुत सारे स्रोते लाइसेंस लेंदे लैके रखे आ वो काम नहीं कर रहे उन्होंने मतलब सारे जी बहुत सारे सोते इदा भी जिन्होंने लाइसेंस रिन्यू कराई जा रहे पर वो गांह काम नहीं कर रहे पर वो भी जो साढ़े सोते सू अगर ज्वाइन करते हैं तो असं उन्होंने बिल्कुल हैल्प कर सकते हैं जो उस सोते जिन्होंने को लाइसेंस है अपना अपने उस में खुश नहीं है असं उन्होंने भी हैल्प कर सकते क्योंकि साढ़े उस हजी जी किसी तरह की कोई भी फीस नहीं हैगी कोई डेस्क फीस नहीं हैगी मतलब कोई रूम फीस नहीं हैगी बाकी जिन्हें थोड़े ट्रेनिंग्स वगैरह है सारिया फ्री है हाउसिंग ट्रेनिंग ज अपने जो भी अपने कंपनियां की ट्रेनिंग जो कहने भी मैंने वन टू वन किसी कंपनी की ट्रेनिंग चाहिए आ वो भी साढ़े जो ट्रेनिंग सारिया फ्री है तो हजी जी इस वास्ते क्योंकि जिस तरह सारे ऑफिस में ज्वाइन कर दिया असं एजेंट नहीं है करते साढ़े ऑफिस वालों तुम्हें कोई चेक इशू नहीं किया जाएगा जो भी जिस कंपनी का लिखोगे वो कंपनी ही तुम्हें पे करेगी मतलब तुम फिर आम थोड़े कई बार दिमाग में होता जी पहलियाँ पांच पॉलिसियां वो तो कंपनी लिखोगे तुम नहीं लिख सकते बिल्कुल तुम अपनी पहली पॉलिसी खुद ही भी लिख सकते हैं बाकी हर चीज़ साढ़े सोते किसी तरह की भी कोई इंश्योरेंस चाहिए आप लाइफ आ क्रेडिट कार्ड आ मॉर्गेज आ सर्विस इंश्योरेंस है विजिटर मेडिकल इंश्योरेंस आ ट्रैवल इंश्योरेंस आ जा कोई इनवैसमेंट हैगा आर ई एस पी हैगी आर डी एस पी हैगी अपने टी एफ एस अकाउंट हैगा फर्स्ट टाइम होम वार प्लान हैगा ये सब वास्ते हर चीज़ एक नंबर जिथे इंश्योरेंस का नाम आ गया तुसीं सिर्फ कॉल कर सकते हैं
0: जी
1: 647-331 647-300-3100
0: ਪਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਦੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ
1: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਆ 70 ਡੈਲਟਾ ਪਾਰਕ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨਿਟ 11 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ
0: ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ
1: ਤੇ
0: ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ 647-300-3100 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਪੱਡਾ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕੁਈਨ ਐਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੁਆਲੀ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਲੀਵ ਮੀ ਆਰ ਨਾਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਨਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ VIP ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਟ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ

सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एनब्रिज गैस.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of RE/MAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at RE/MAX Gold Realty to book your unit today.
2: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मां। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घिओ, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मां, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट।
3: भाई साहब, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
4: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
5: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
6: 11 AM to 6 PM All drinks 50% off. Tikka Junction Brampton te call karo 647-429-4040. Tikka Junction Brampton.
7: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक, चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनदा है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 and 10।
8: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
9: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। सत श्री अकाल जी, मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो।

0: आज खुश तबाह हो गया था।
1: वो तो होना ही है जो तीन वीडियो का नो फ्रीजिंग नो बफरिंग वाला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स हो नगता बनता ही है।
0: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
1: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए पाजी सेलिब्रेशन 40 years इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
1: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जां tillobideo.com होर कोई सेवा
3: एक लाइफ है जिससे लव है
4: ये कहते मुझसे सब है
5: पर एक घर है जिसका ड्रीम है

0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਥ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਲੋਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋੜ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ?
0: ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ, ਆਪ ਬਤਾਓ ਕੈਸੇ ਹੋ?
1: ਕਿਰਪਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਹੈਪੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜੇ ਪਾਵਨ ਜੋ ਹੈ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਧਾਈਆਂ, ਆਪਕੋ ਸੁੱਕੀ ਪਾਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਬਕੀ ਹਮਾਰੀ ਮਾਓ ਕੋ ਬਹਿਨੋ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕੇ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਮ ਲੋਗ ਚਾਹਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਏ ਅੱਛੀ ਹੀ ਖਬਰ ਆਏ। ਸੋ ਇਸੀਲੀਏ
1: ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ,
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 100% ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਹਮ ਲੋਗ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਰਿਨਿਊਲਸ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਥੀ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਰਿਨਿਊਲਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਮੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਨਿਊਲ ਪੇ ਹਮ ਲੋਗ ਜੋ ਹੈ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹੈਨਾ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਲੋਗ ਰਿਨਿਊਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਤੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਛੇ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੇ ਵੀ ਅਗਰ ਹਮੇ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹਮਨੇ ਰਿਨਿਊਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੋ ਉਸਕਾ ਆਪ ਕਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਹੋ?
1: अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मैं जो समझा हूँ कि जिनकी रिन्यूअल्स लेट आ रही हैं, जिनके रिन्यूअल 2 साल के बाद है, 3 साल के बाद है और उनकी उन्होंने जो है पैसों की जो है वो जरूरत पड़ गई है
0: जी,
1: राइट। तो हाउ माई सर्विसेज, व्हाट इज माई एडवाइस ऑन दिस, राइट। सो बहुत ही चंगा सवाल है, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। और उससे पहले ये बताता चलूं कि यस, नेक्स्ट प्राइम रेट जो अनाउंस होने वाला है एंड ऑफ अक्टूबर में है, तो मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शन ये है कि रेट बढ़ेगा वेरिएबल रेट का, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी एंड ओवरऑल सिचुएशन बहुत ज्यादा मिक्स्ड हुई हुई है। ओके, आई एम कमिंग टू द योर पॉइंट और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि फिक्स रेट और वेरिएबल रेट के क्या फ्यूचर क्या है और वी गोना टॉक अबाउट इट। अभी हम बात करते हैं जिनकी रिन्यूअल्स देखिए 2028 में 29 में है, अगर वो ब्रेक करेंगे तो उनको पेनल्टी चार्ज होगी, ठीक है। स्पेशली जिनकी फिक्स रेट है, क्योंकि काफी लोग जो है वो रीफाइनेंस रिन्यूअल अभी लेट है, राइट, दे डोंट वांट टू रिन्यू नाउ। तो उसके लिए अगर पैसों की जरूरत है, दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप अपने तुहाड़े बैंक नाल जाओ जी, इन बैंक नो पूछो मैनू होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट कैसे मिलेगी, राइट। सो बेस्ड ऑन योर इनकम, बेस्ड ऑन योर क्रेडिट, आपकी घर की वैल्यू 65% लोन टू वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मिलियन का घर है तुहाड़ा और 6.5 लाख की तुहाड़ी मॉर्गेज है तो उसी बैंक नाल जाओ, बैंक नो रिक्वेस्ट करो अगर आपको होम एक्विटी मिल सकती है। अगर तुहाड़ा क्रेडिट एंड इनकम चंगी है जी तो उन्होंने मिल जाएगी। पहली गल तो ये हो गई। अगर सवाल ये है किरण जी, अगर तुहाड़ी ऑलरेडी 70-75% जो है तुहाड़ी मॉर्गेज बैलेंस है और तुहानू जो है तुहानू चाहिए होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, तो की कैसे होगी, राइट। तो उसका यही आंसर है कि आपको बैंक तो नहीं करेगी, बट बैंक के अलावा कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो बेस्ड ऑन दी एक्विटी, बेस्ड ऑन दी एक्विटी आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल सकती है। ओके, सो वंस अगेन, पहले तुहाड़े बैंक नाल अप्रोच करो, बैंक अगर आपको थम्स अप करता है वेरी गुड, अगर बैंक नाल नहीं होती है तो मेरी तरह किसी मॉर्गेज प्रोफेशनल को अप्रोच करें। बेस्ड ऑन दी एक्विटी मैं आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दिलवा दूंगा, 1 साल से लेके 5 साल के लिए आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड डेट्स पे करने हैं इससे लाइन ऑफ क्रेडिट से, या आपको जोर पड़ गई जी आपको बेसमेंट बनानी है, है ना, और साथ साथ बच्चों की वेडिंग अगर दिसंबर में कोई प्लान है या समर में प्लान है, आप चाहते हो कि जब जरूरत पड़े तभी मैं पैसे निकालूं तभी इंटरेस्ट चार्ज हो, तो यस, होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट वुड हेल्प यू। देखें, होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट ये घर के ऊपर ही मिलती है, राइट, बेस्ड ऑन योर इनकम और क्रेडिट पे। अगर आपका बहुत अच्छा इनकम है, बहुत क्रेडिट है, तो आनू बैंक नाल अप्रोच करो। अगर ये थोड़ा क्रेडिट जो है चंगा नहीं है और इनकम नाल इशू है तो यस, give me a call, I'm here to help you. This is Mukesh Chauhan, mortgage broker for Mortgage Diligent. Number to call me 647-512-7000, 647-512-7000. 0000
0: बिल्कुल मुकेश जी, मेरा एक सवाल आपसे और एक है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम घर परचेज कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बैड क्रेडिट है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे?
1: डेफिनेटली देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी की देखिए बैड क्रेडिट है या किसी ने कंज्यूमर प्रपोजल या बैंक्रप्सी करी है, अगर आपको साथ साथ होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो चांसेस हैं बैंक के पास जाओगे, बैंक नहीं देगा आपको, है ना, 99% नहीं देगा, क्योंकि आपके पास कंज्यूमर प्रपोजल या बैंक्रप्सी है। अच्छा, काफी लोगों के माइंड में ये कि अब आप तो आपको सेकेंड मॉर्गेज भी नहीं मिल सकती, लाइन ऑफ क्रेडिट भी नहीं मिल सकती, तो आंसर ये है कि मिल सकती है किरण जी, है ना, ये मिल सकती है आपको, क्योंकि आप कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं बेस्ड ऑन दी एक्विटी आपके घर पे आपको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल सकती है। उसके लिए आपका इनकम होना जरूरी नहीं है या क्रेडिट होना जरूरी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर आप लाइन ऑफ क्रेडिट कैसे दिलाएंगे, हमारी इनकम खराब है, क्रेडिट खराब है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बैंक इज नॉट द ओनली ऑप्शन, बैंक के अलावा कुछ इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो बेस्ड ऑन दी एक्विटी आपके घर पे एक्विटी होनी चाहिए, बस ये शर्त है। घर की $1 million है और 5 लाख का मॉर्गेज है, तो मैं 2 लाख से लेकर $3 लाख की लाइन ऑफ क्रेडिट अरेंज करके दिला सकता हूँ। कंज्यूमर प्रपोजल पे करना है, बैंकरप्सी के अमाउंट पे करनी है, उस अमाउंट से ये आपने क्रेडिट कार्ड पे करने हैं, दो तो तीन तीन साल से अगर प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पे किया वो पे करना है, तो यस आई एम हेयर टू हेल्प यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप किसी ने मॉर्गेज मिस करी है उसके लिए मुझे कॉन्टेक्ट करें, 1 महीने की 2 महीने की या जॉब नहीं है जाने वाली है आपको लग रहा है, कॉन्टेक्ट करें बिफोर इट्स बिकम टू लेट, गिव मी अ कॉल। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, अगर किसी को कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग चाहिए और जो है वर्क परमिट प्रोसेस में है साथ साथ जो है, तो आप मुझे कॉल करें, आई कैन अरेंज अ कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग, अपना घर बनाना चाहते हैं, पैसों की जोड़ पड़ गई है, तो यस आई कैन हेल्प यू। सो एनी सिचुएशन गिव मी अ कॉल, दिस इज मुकेश चौहान मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट, नंबर टू कॉल मी 647-512-7000 किरण जी और सुखीपा जी, वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि आपको, हमारे सारे प्यारे लिसनर को बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी हैप्पी नवरात्रि, एंड हम लोग जो है फिर दोबारा जो है आपसे कल या फ्राइडे को बात करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन।
1: थैंक यू किरण जी,
0: नो प्रॉब्लम जी। सो तुसी इन्हां दे नाल गलबात कर ली, नंबर 647-512-7000 ते जिहड़ी है जी जानकारी किसी भी तरीके दी मॉर्गेज संबंधी लै सकदे हैं, घरां दे विचों पैसा कढ़ना या तुसी जिहड़ा है जी बैड क्रेडिट है, सो इट्स ओके, ही कैन हैल्प यू। एंड अज दा प्रोग्राम जिहड़ा है जी किया 427QW दे सुगना भी जिहड़ा है जी हो सकदे है गलबात, क्योंकि इन्हां दे नवां शोरूम जिहड़ा जी खुल्या है किया 427 दा, बहुत ही शानदार जिहड़ियां जी किया दीआं गड्डियां, तुसी एक बारी शोरूम जरूर विजिट करना किया 427QW ते, ते इन्हां दा नंबर 647-461-5001 ते जिहड़ी जी गलबात कीती जा सकदी है। और एक नंबर मैं तुहानूं होर जांदे जांदे जरूर सांझा करना चाहूंगा, इह नंबर हैगा है अंजुम कुरैशी जी दा, जिहड़े कि एक्सीडेंटल क्लेम बेनीफिट दे विच तुहाडा पूरा पूरा साथ दिंदे ने, रब ना करे रोड ते जा रहे ने एक्सीडेंट हो जांदा ने, उस सिचुएशन दे विच तुहानूं अंजुम कुरैशी जी पूरा तुहाडा जिहड़ा है जी पेपर वर्क तो लैके क्लेम प्रोसेस तक साथ दिंदे ने। इन्हां दा नंबर 416-570-0157 ते जिहड़ी जी तुसी गलबात कर सकदे आ। और हुण थोड़ी जी गलबात जिहड़ी जी आपां इलैक्शन दे रिलेटिड भी कर लैंदे आ, क्योंकि जिहड़े जी इलैक्शन ऑलमोस्ट जिहड़े है जी एडवांस वोटिंग जिहड़ी जी ओपन होई हुई आ, सो हुण जिहड़े जी एडवांस वोटिंग दे विच 16 ते 17 वाला जिहड़े जी दिन रह गया, ते एक्चुअल इलैक्शन डे October 26 नूं हैगा है, ते तुसीं वार्ड 9 ते 10 चों हरसिमरन सिंह जिहड़े जी रीजनल काउंसलर दे लई खड़े ने, तुसीं इन्हां नूं भी वोट पा सकदे ने। बलजिंदर सिंह नाहल वार्ड 9-10, तुसीं इन्हां नूं भी जिहड़ा जी वोट पा के अपना जिहड़ा जी अगला कैंडीडेट बना सकदे ने। और किसी भी कैंडीडेट बारे कोई भी जानकारी लैने वे तुसी केड़े भी विभाग च रहिंदे होणे, साडे कोल सारी इनफॉरमेशन जिहड़ी जी अवेलेबल हैगी आ, और आपां तुहानूं सारी इनफॉरमेशन प्रोवाइड करदे आ 9057990999 ते। सो बिल्कुल जी, कल नूं मिलांगे इक नवें दिन दी शुरुआत दे नाल और इक वधिया प्यारे जिहे रेडियो प्रोग्राम नाल, तद तक तुसी सारे रहो जी वधिया ते चढ़दी कला दे विच।

0: हमारी इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट दुशहरे पर दे रहे हैं बाय वन गेट वन फ्रेश देसी घी की जलेबी स्पेशल केटरिंग ऑफर एट 1099 पर पर्सन स्वीट स्टार्टिंग फ्रॉम 699 पर माउंट सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस गार्डन लूप ट्रेल फेंडर वे फाइनेंशियल ड्राइव इन ब्रैम्पटन
1: कैनेडा डे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
3: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार
4: Solution to promote your business. Desh Pradesh Prime Time Radio and TV. Tohade ang sang 24 ghante satto din. Hun tak Desh Pradesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai. Te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vadha karan vaste Desh Pradesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551
5: ओके तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
6: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
5: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
6: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
7: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
8: 416-509-1500

0: लवली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट दुशहरे पर दे रहे हैं बाय वन गेट वन फ्रेश देसी घी की जलेबी स्पेशल केटरिंग ऑफर एट 10.99 पर पर्सन स्वीट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99 पर पाउंड सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस गार्डन लूप ट्रेड फेंडर वे फाइनेंशियल ड्राइव इन ब्रैम्पटन
1: स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लेने लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
3: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
3: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
6: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@desh